ध्यानायम एव यम काम्ये बुलो जो जो ते खनानिं मिनो न थोंगो यां याने पापिना मिलियन ये थिंगो चिन्दिया चिमाले न्यन